फुम कहाम खनाय दनाय रांसाकनि ताखु बखु खापांनि मारे किचिं छ नरखनाय तंगो सारसा पॉइंट डॉक मेगा हर्सो तिनिनि फुनि आकाशवाणी आगरतलानि एफएम उज्जयन्त बान्दा तिनि स्रांगशाल तालतुं चिप्रीरा थामचिबा दुइप्रा बिशि जुन तालनि शालथाम नैसाय नैचिदक इंग्रेजी बिशि खनाय दंनाय रांसाकनि ताखु बखु पुइलावनो जों तिनिनि शालनो लामसबे खोनालायनो दियाय माने रोजाबनो

0: आकोजतै नाङ्कुक पनि जराव सुवारिमु रुनानी पाकै कान्चनपुर बखाक्स्ते हाफाङ सामु मुचुङजाक कामिनी लुकुरोक्नी थानी सिभिल डिफेन्स भोलन्टियर एबा लुकुका सुमुङ सुवारिनी बागै कैलै याचाकै टङ्गु सालचि त्रिपुरा हाङ्कर आगज नाइकल फाङनि दागिमुङनि ककतै कान्चनपुर बखाक्स्ते आरो टङनाय रक जेनी उमर नखाबिसि जि चानिसमि नखाबिसि बाची चरा बरक बुरै तै चलारक अर कैलै या फरमान बाइनाय रुङमारिनि कक साजाका अर माध्यमिक पास कैलै या फरनानी पाइथाक सालमारी हिनकै जुन तालनि सालची सालमारी चरा त्रिपुरा हास्ते सित्रामुङ कासुमा नाइमथा नैसाइ निचिदक बिसिनी बागिन सालथाम रमै जुन तालनि सालथाम सालमारिनि सिमि सालबा जुन जरा बरक हायुं हाबार साल नैसाइ निचिदक पान्दा लुवाजिवानो त्रिपुरानि आवाइजाक आन्द्रसन हायुं बेरेम तैब पिरना बागै तै हायुं हाथिव अबनि ओंथतक न आवायना बागै त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएपल फेस्टिभल निसाइनि चिदक संजा जागानो इजुन तालनि सालनि चिसिनि निसिमि निचिचुको जुन निसाइनि चिदक सालथामरमै दिल्लीनि मेजर ध्यानचन्द नेसनल स्टेडियम त्रिपुरासा हामकराइ बेदेक हास्ते हाफां कायसा आयमुंनि बिसिंतै साक्लायखा रुंरेम दक निसिमि रेमचारो सोरोंनाय सोरोंनाय जुग्रग्न प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि बागै बिएमएस पोर्टाल अनलाइनतै कयलाय याफारै एबा या फरमान बायनाय bms.tripura.gov.in अपोर्टाल जुन तालनि सालथामसि नैसाइनि चिदक जरा कयलाय या फरमान बायानो कयलाय याफारपुरु स्कुल इउनिफर्म बाय तिसाचाक पासपोर्ट साइजनि कैसा मांगपिलि याफारना नांनाय तै दंना नांनाय एसटि सार्टिफिकेट सोकां रेमनि मार्कशीट इनकाम सार्टिफिकेट तै रेशन कार्ड सोरोंनाय एबा सोरोंनाय जुगनि मुं कासाजाखनो नांनाय तै लगिव नांनाय बेंक एकाउन्ट अब हाइके नहते कैसे तंग त्रिपुरा नि चुकचाक एबा चिनि त्रिप्रासा सोरोंनाय सोरोंनाय जुरुकनि बागै वाइसाबाय रांमारिनि चुबा चुनि बागै कायसा आयमुंनि बिसिंतै साक्लाय जाखा आंबोनि बागै एस टि रुं सोरोंनाय रक न अब चुबा चुरो जाखनाय तै एन एस पि पोर्टालो हस्टेल दंनाय ओंगै अंगसिजाक ओंना नांनाय माध्यमिक तै कुचुक माध्यमिक आरो नम्बर 45% नम्बर मान्जाखना नांनाय तै प्रफेसनल कोर्स अब सुरुङै दंनाय रमदि डिप्लोमा इन्जिनियारिं मेडिकल पेरामेडिकल फार्मासि म्यानेजमेन्ट तै अबहाय प्रफेसनल कोर्स रग सुरुङै दंनाय रग्नो न पोस्ट मेट्रिक स्कलारसिप रोजाखनाय हिनि साजाखा कयलाय याफानानि पाइथाक सालमारि इजुन तालनि साल थामचि सालमारि जरा आसुक जरा कक्थुङ्ग खनालाइक्या
1: दाबु खनाबादि नगपर्ति पर्ने कक्थुमा आगुलि बिरखुङ खलातै गानागिरि आम्सानि नगपर्ति पर्ने कक्थुमा हो साक्लाइ जाखा नखा किसा चमै गनाङ तबनाय किसा मिसा वातै फाइपानो मानो तुमकुक मानि मारिओ नुक्साखानो तुमसा मारिओ थामसिबा डिग्री सेल्सियस तुमख्लाइ मारिओ नैजिस्नि डिग्री सेल्सियस नबारो तै हकुनि मारि साखाओ नुक्साखानो चुकुचिबा पार्सेन्ट तै खामाओ नुक्साखानो दक्चि थाम पार्सेन्ट हजाक मुङो साग्लाइ जाखा फेरांककै कैसा कैनी आमचाइरको वातै फाइपानो मानो आबो रोम्दि वेस्ट खुवाई सिपाही जला गुमती याखेबा साउथ डिस्ट्रिक्ट रक आबुनि पाकै किसा मिसा हजाक मुं तंगनानि पाकै कक मुं कांसाव गोजार जाखा
0: अंगे ताबु खाना लायन जों सेबुग बरक तलांमानि कक त्रिपुरा

रोखनायदों सारासा पॉइंट अफ मेगा हार्स एफ एम उज्यंत जरा स्टूडियो आज जगह जे बीनता हे दाबुकनी स्टूडियो जरा खगो दामी दंग दीपनी दाम चीनी अंगे मुफली सांग जरा उनारक जतन दीपर गाहाम तेनारकनी तीन निशाल जतनी बागिनो गाहाम लाइनानी अंतुन गाय खानी चापुंग पांडाओ खनालाई दंग नरकनी गय हर जाग्रा चापुंग रंगे फायदी एस एम एस नायलायनाय साबतामो सिहरका अंगे एस एम एस सिहरनायखा लक्ष्मण गोब्रा बारानी लक्ष्मी देवबर्मा सिंगार विश्वनाथ देवबर्मा बाहर चाचा आशक्ता काब्दी और चापुंग खनाना हिनी कहरका हंगे फायदी खनालायनाय और चापुंग हंगे खनादी बुखुक लक्ष्मी निनी खनातक जापानी और चापुंग आशक्ता काब्दी दाकदी नाथाकदी और चापुंग हंगे खनाय दंगदी लगी दंगदी पांडा पाय शक जरा दीपुनी दामने दामी सती थामची जरा नरुनी गजारा आंग तंगनाय

रुख खनाव हमने यागलो दाल बेदल पांदा हमने यागलो नरके हम सब मार चीनी खातुंग मा पांदा पाई था को खनात को खरांग पांदा हंगे आ तबुक चीनी स्टूडी ने जरा खो को तामी तोंगो दी पुण्य दाम चीनी तामी शोधी दोंगे मुफ्ली जीजुगो हंगे तो आशा कबंग तो जरा करी खेबले ना हंगे आ को कबंग साये वो ही फायदे एसएमएस नहीं नहीं शावो तामो शेहर का बाई पुंका हा मानो रचा पुंग खना रे दी रचा पुंग निकोक थाइंग का गाना गाना नंग तोंग तिखे मानो शी ते शुहल देबर मानी हानी पारा मानदाईनी मुंग जून देबर मा हंगे गाना गाना और रचा पुंग खना ना हने को हर का हंगे खना दे जून मिमी खना तक सामने और रचा पुंग 101.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम उज्जैन तवा

गेटाबो खानिनि चापुं पान्दानि पाइथाग्रा चापुंजों खोनालायनाय गा एसएमएस साबो तामसि हरका नायगना आ फुंका हामबाय आं होनागि छरानि क्लान्त आं रचापुं तांसा खोनानाय स्मृति बाय रचापजाक कक थाय हिंके नों वारेक्सा ओंमारक हिंके अर चापुं खोनाना हिनि गय हरका ताखौ क्लान्त हिंके बिनि खनाथक जाक मानि रचापुं खोनालायनो जों चिनि तिनिनि खानिनि चापुं

0: खर साल फैके जवाबा अमन कर लगे तंग जो तो भी अंगे चुप मुंग जवाब ने चुप तंखाय मुंग से जीवन दुख तंगला खामन मुंग बैलांग तो छ या प्रेस हेमन उल मुंग तंग ठगन कारे मुंग मुते देखन मग मुंगांगे ख करन आंगे दुख नि कारण थाय मन मुंग मुंग जदि आनन नि खानि हेने वान चुकाय आनि खर तंगै तमा दुख तंग छते के छादि
1: पुनिमा पुनि नंग भाई फोंसे ने मुसुक समय को तो न तांगरी खा आंग है फोक को ने दुख कष्ट होते ही कबाई संसार ने जंगल ने कॉप रंग न खाना भी टामो खाई नहीं पुनी अनि निराशा जीवन ने दुख ने कोंग न न शाहुई आंग है मनक मुगत लाना नहीं पुनी
0: मैं आंग सिंह ने कॉप में उतर सी दी करन प्लीज करन प्लीज
1: खाना दे पुनी सीनी संसार साल सा मुसुक कथार टे नेटवर्क टोंगवानी नगो मा बा ते दास हेकनो तिये
2: तामो नंगले खासा खा सुगु दो मानन तंग हिनो
3: आको ओन तामो खाइना ल
2: आ नंगवान छुमा सुकरे जाखो जतो सुला रंग सातै ने बागै बुमा एबाक्स वान छकै त राखमनो आयंग ताखुने रग बबते खब तुई फाइन अकरा सा थांका पियानि नग चाकरी ने कागज तो बुना हिन कोसो सा थांका परखाने खबर खाना ना बाग मता रक्से सावै मानछिओ सामने को पालब बबते व सोइतु खा खबर ब कहम दंग न हाय दंग न सबले सिसि
3: उहु उ सेकोनी बुमा हा निने हाय नु आनी खाबो तंगै सोकरि तंखा तुमा हिनबा नोंले बुरैबा खानि कंनो खुंबाय साखो आंबा जेलाबा खानि कंनो खाबो अ जबुइ दुमा नोंते वासुं तंगा ता
2: आउ खा तं थया मा सुंगो सिनेले जागा जमिर व जबै करै खा सेकनि बु इ कम काहम करं साकरे अं थांका करन ब पास खलाय के बरक ताखुन जान जाया कुए बासै मान थैने मा वान छक जाओ

0: 오, 사뚱마모 뭐 살찌 캄프로이 탕모냐운가 미리치 꼼사만 응라시나이 에 하이 아무 대실리시 보고 파이크나무라 에 아무 두마 할마 동갑래 이히 응야고 용성농어세 호키다마노 기자만 아이그라시나이
1: बकरक छामाब आंग्रिया नो से रकय मा तंसिनाय
0: अजी अजी काम कासे गमो सिरो खितु बाले बाले वारियो वार्थ वार्थ मनोगो साबो तो साबो तंग ओय ओय ओय
1: साबों खो साबो ओ दुर्गेश पियंदा फाइनि नक्सिंगो
0: आनो डाकरन हकी चिकित्सा तलांग नहिं फाइमानि
1: इको खामप्लाय आसुग्रादि तिरक बुदेकां हंकाय नुंग न नहारि नंग्रादि दुर्गेश
0: ता मोंडा करनि शरीर रका हामेदे हंकाय ओं छनो काय ब्यांग थांमैला
1: मो साना कोक दांसि दुर्गेश आंबा शरीर रक हामियाबाय मा बा सं ब्रिजु बुरानि जरासे नुखुं कताल संसम हाय इंग्लाय मा तलाय जासि ओ दुर्गेश
0: आमोंडा सेकुनि खोरखै बाहाय रांकुसारो रहनामला
1: रहया कक्से तंगोनिया दे तालकै पिलांदा नुगुसे थाइबुं रुजुदि हिनो दुर्गेश
0: कक बहाय नो डाकर
1: दुर्गेश रां रो ग्रहकाय तो निनि याक तिनो सफाय गमले नोंसे ओमयालनि रांग्रि चिथिरो बिलिखायनाय तामो सानानि नगो बाजि तंगब करैबे बक्सा मुनो साकाइब बुइखनाव करिनि बेरतेव जकाफ ओइ दुर्गेश

0: 사동마보 사동카 소리 럭시 뭐지 탕바시오 사배 꼭 살아 정말 힐라 어앵 들게스 덩커
1: 아노 영물에
0: 아숙 디니 디니 바하이 아탕코터 라마 코라 샤파이 칼라 코노 코버레 또 위파
1: 코노 코버 그르 영물에
0: 지니데 데 코버 럭 샤파이시 제 탕고 힌 탕마니 랑푸샤 또 러헐이야노 뭐부터 똥마이 샤바이 히니파노 지티럭 러헐이야 बर हाई बुईबा फातरा साके खाने करई दे आहे पा न नग रंग पैसा रह कत ते सपा न कसा खमो
1: बापा रे उफ सातुं खा पा पा पा आ नो बस की जपा न फाइनिया आ मु फांग बोले रो से मोजी थांग मई सिओ सेकोनी बुमा आनो तुई की जा खाने करा दे
0: आओ
1: तामो बाबू जी कोनी नुमा खाई बाहिं खा
2: हमिया आगिन हाइंता
0: हिंदी तुई
1: होडी ओ साबोंग कु साबो आयम दुगेस दे
3: आनो यमसला कोक सलाई तों खटा
1: आहा आ सिनी नुखुनी कथ मारोंग न दे ते सावई पाई पाई बो साबो तुई र जुगिया पुरुची जुगिया ताबु ततर बाइखा

0: ओके बाहे चोली खानो नि खबर रो
1: काम नि कोंग नो बता म थाना नि हांगर निकाले सुई का गया हाय आनी नुखुनि जंगजाल बो का गया काम हिन बा साना खाइबो बेकरें खिन ना काइबो बहानु मि तंखा
0: तार माने ताम साना ना यार प्लीज टेल मी आई एम वेरी ग्रीडी
1: खना दि यार आं बो का जगे हमजक नि या को मुनचारी होय आमा बाबू नि दुख कष्ट ते ब्याह ने लगाई रंग सू मानी हेने खा खाईमानी बेबाक निराश हम थका माँ बा बाय नगो खा तो गया नि मारे न आं चाकि खाईमानी जगाओ से तुम मा तो निशो पृथ्वी से हामा मथाक ना बा तब से निन मारे ओ नु खुंगले का सनलिया से हिनी तंगशिवो हुई तो खादी यार नि मारे न को कसांग बाय बसाओ बुझो खा ते याक सिमी से तीस ना बाकी तंगशिवो
0: बारी चाया यार बारी हमिया आती कक रुना आं खनावन हिनै किच्चाफन बाबी माया यार बड़ो मनुष्य तो वाक टक गया बन बुई तक फेरनानी किंतु फरंगी रिंगना तो कक कर
1: मब सैन यार आं मुसुंग ते खरक से मुसुंग हिंगाय बन बो फरंगी माया मा बा ताम हिन बा लेखा पढ़ा करे बाइजे एडजस्ट उंगी माया उंखा
0: एडजस्ट उंगी मानना माया तो निचिन थानी सिवला ना यार तैमा बसक बियाल विपद नई हापुं सिनिया बारे सागर मिलीफाय आमती खाइन चुंगो संसार बै काम हामिया तई मा गदाल इ हाओ आम बाबन कारे के कतर करे
1: आब तो ठीक न ताबक आं बो लामरम खाय आनी ओ गबाय नुखुंग न कताल खाय सिनाम मानफि न सालासला यार प्लीज हेल्प मी
0: खाता सबाय दे यार साजेस खाइमानि सेका आनी कबु मुकाय सनार दे यार
2: चाकरी खाई थानी तंगमा बा नौ खबर कहां।

रखनाथ सारासा पॉइंट मेगा हार सेन तजारा स्टूडियो आजुक सकांग जेबीनो तांगे जतन दीपर कहम ते लाम सगो दल विदल पांडव चिंखना लाइने कक हिंदी सबल जाक दल विदल रचापुंग लगे तुंगी ते खनाई तुंगी ते अजरा अनुरग चीनी पांडन खनाई तुमी बागे नरक जतन पाइप लाइ हम बाई दीपुर दाम दामी सती थाम चिजरा नरक लगे तुंगी ते खनाई तुंगी इंकई सारा मचुंग नरक ने तीन निशाल जतनी बागे नौ कहम लाइने फायदी रचापुंग खाना खनातक रचापुंग नरक ने बागे खनाई तुंगी लगे तुंगी बलैन खनातक रचापुंग

ग्यो खाना तो खर चापन खाना लाइन सिंह चीनी तीन दाल बेदाल पानी जंग बारी जंग चेंगलाइन नरक हमजाक मा चीनी खातुमा पानता हे नरक हमजाक मा चीनी खातुमा पानता हे नरक खाने मान फैन हाई खाना तो रचा पुंग्रक हे खाई दंगी लगी दंगी

रुखनाथ 101.6 मेगाहर्ज एफएम उजेंत जरा स्टुडियो आचुक सगान रुलीबुको कारजे बिनोता अंगे चंग अनरपनी हमजक माचिनी खतम पांदो खनालाइने नरपनी कय हरजक रजा पुंडो अंगे जरा अनर

0: चतुर्थ नौ पाइपलाइन हम बाई चीनी पांडा नौ कराई तुम्हारे बागे ते पांडा पाय शक जरा नौ कराई तुम दी जीवन ने दाम ने तमो ईशो ती थाम ची जरा नौ में कचारां तो नहीं था बुक चीनी स्टूडेंट ने जरा को तामी तोंगो जीवन ने दाम शा तमो ईशो ती थाम ची शंगे मुप्ली ब्रेजी थाम क्या जरा उन रुक चतुर्थ नौ है लाम सो ते नौ रुकनी तीन निशाल जो तो नी बागे नौ का हम लाइने ने इंग तुन के पुला वो खाना अंको तु गया सक नहीं तमो हिन मले नौ रुकनी हम चक माची ने खातुम नौ पांडा तो शो ती थाम ची ची जरा मानो हंके पुला वो नौ अंग नौ रुकनी खाना तो चक माने रचा
1: मेला फिल्म नी बाय
0: मेला फिल्म नी बोर चापूं
1: को मेला दो लोग कहाँ
0: था ना मेला दिलो का ना दो
1: बाय दो
0: हम बाय मेला क्या ना को दुक्ति क्रम में बागे हम बाय अब मुंखा ऐसन रचापूं खाना नहीं निकल हर का मेला तो के नी रचापूं अंके तो रतों नहीं लेने तों का कई अंक ना रनाई बिनी खाना तो जग मनी रचापूं

0: देखा।
1: ये है मिस्टर राम और ये है मिस्टर श्याम। देखिए इनकी सूरत तो मिलती है लेकिन आदतें नहीं। भाई जहां शाम का तापमान छूता है आसमान, वहीं राम आराम से करते हैं हर काम।
2: कत की ढंग देखाली धन।

मुरलिया बाजे, हर बास की बनी मुरलिया, हर हर बास की बनी मुरलिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, चंचल चतुर अंगुरिया जिसे पर, चंचल चतुर अंगुरिया जिसे पर।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, धान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: इनके टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक दो तिहाई बहुमत के आंकड़ों से

0: अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
5: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
4: वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के

0: तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
1: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हू लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।